0: गरेको भए होइन, गरिहाल्नुहोस् ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
1: अस्पताल भर्नाको खर्च, ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज, न कुनै फाइनेन्सियल तनाव, न त क्याशकै झन्झट, सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
0: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स,
1: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
0: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
1: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
2: बितल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वाल से टिकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराइए। सत्कार पोलिक्लिनिक में बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मारा बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सक्कु रगत जांच फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह टीकापुर कैलाली, फोन नंबर 0915600095 ओ मोबाइल नंबर 9848423।

0: ओए रजनी ओ वहां 62 नंबर लक्ष्य बा देखाओ त कत्ते लिखाओ त
1: मुर्गी दाना देना जाला म काकर लक्ष्य खा देती अब ना
0: एक तो तपावा का मुर्गी न खा रखे लक्ष्य से डिरेले से बक्सा की आनो हारी छत
1: तापन घिसकाई चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस सागर बेन घर भीतर आई लागी कलते भगेबी
0: पारक भीतर पैट का मुर्गी मुआडी और खादी कहीं का भगाए खोज लखो का
1: आरम कीड़ा फटिंगा मुझ साफ सिर निशा कर कहीं का फलाम का जारी लगा बात तब मुर्गी खेती बुगाई नहीं सेकी बेन अपना न दाठी दूर रबीना
0: हो बिना था का करना हो सपो देखती की डर लागल लग रही था देव सपो तो अपन घूम का बारी वोट कर गिनता
1: हमारे खेल सापन से डरे ना नहीं होगी मुखर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चले लगी पति रक्षा करत लाग व अपन बचाव करत लाग साम दस ना कर था
2: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाई वा नी जिसके साप मने देख डरे था नी चला खा दूर रह से साप नी दस्त पर मुखर खेना खाजा बाहर निस्कर मेरा मत घास काटा बेल ख्याल बेल ड्यांग बेल छुबे से मन मही मारक बाट कना सबस्क पट्टी रक्षा कना क्रम साप दस लाख रह मन सापन व्यक्ति की मारक लाग रह उसी को कर बेल फिर साप दस लाख रह
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्द हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लंघक सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेती था
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टीकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौ
6: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि
7: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण आवश्यक मनोविमर्श सेवा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो
6: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त
7: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टीकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टीकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला
8: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टीकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला सम्पर्क नम्बर 98584899213 इमेल ocmcticapur@gmail.com

0: कबू कापिए रही था, कबू पेंसिले रही था, कबू झोले फटा का आजी था, का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई, कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस काटस बाटिन, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रख गई झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: के तपाईं चाया, डन्डीफोर, दाद, एलर्जी, कपाल झर्ने समस्याबाट पीडित हुनुहुन्छ?
4: अब टिकापुरमा रहेको मनीष मेडिकल हलमा काठमाडौँका वरिष्ठ छाला यौन तथा कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डाक्टर लोकेन्द्र लिम्बू यही असार 13 गते दोस्रो शनिबारका दिन मनीष मेडिकल हल टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ।
3: मनीष मेडिकल हलमा पाइने सेवाहरू: अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या, छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने, इक्जेमा, सोरियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोगको समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खस्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, अनुभवी स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा स्वास्थ्य परामर्श तथा उपचार गरिने।
4: डाक्टर आउने दिन असार 13 गते दोस्रो शनिबार,
3: छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टर मनीष मेडिकल टिकापुरमा आउँदै हुनुहुन्छ। साथै प्रत्येक दिन MBBS फिजिसियन डाक्टरद्वारा पेट, छाती, मुटु र थाइराइड चेक जाँच तथा स्वास्थ्य परामर्श पनि दिइन्छ।
4: स्थान मनीष मेडिकल हल, अस्पताल रोड, टिकापुर 1, कैलाली। सम्पर्क फोन नम्बर 98600-71024 र 98046-77417।

0: सामाजिक सञ्जालमी निकेरी जाँची बुझी भएर बैंकको आधिकारिक प्रोफाइल मात्रै फलो गरौं। कसैले लिंक खोल्लाए अगाडि त्यो क्याको लागि हो, कहिले पठाएको हो र कहाँ जान्छ निकेरी बुझी भएर खुल्याएको वेबसाइटको URL चेक गरौं।
1: अप्रिय घटना हुन नदिनलाई समय समयमी आफ्नो पासवर्ड बदलौं। आफूलाई केही शंका लागेले बैंकलाई छिट्टै खबर गरौं।
2: सतर्क रहौं, ठगीबाट बचौं।
1: सिद्धार्थ बैंक पठाई जनहितमी जारी सन्देश।
3: सिद्धार्थ बैंक, सम्बन्ध सधैँ भरिलाई।
4: कार्यक्रम छोट मिठ साता के बुधवार दिन के एक बजे से अपने उगन थारू भाषा के कोई गीत मन परत।
5: जब देखनो तो हिन है।
4: यदि मन परत हुई कल से अपन मन सुनना चाहती कल से हमन फोन करी और कही महीन ई गीत मन परत गीत के बोल बताई। गीत मन परना के दुई ठो कारण वो गीत कौन एल्बम के हो या फिल्म के नाम बताई और अंतिम में एक जन के नाम अनिवार्य ले दी। कल से हमारे गीत अपने पक्के से सुना तो उठाई मोबाइल और डायल कर भी 0915162555 साता के बुधवार दिन के एक बजे जरूर डायल करे हुई। कार्यक्रम छोट मीट में केवल सामुदायिक रेडियो टीकापुर FM 101 MHz में सुने ना बिस्तरी। मई कार्यक्रम संचालक रमेश मिशन के साथ में।

0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कूट पीट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैसे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
1: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुई देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली
2: चलचित्र परदेशी को गीत सुनो
3: न
2: तो पनि गाए था।

0: ए भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन त बाबु के पाउँछ त्यहाँ?
1: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर, ढक तराजु, घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
2: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास, ग्यास चुला, नलकाका सामान, किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
3: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन प्यान्ट, घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
0: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ।
4: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतोल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला टेरस।
5: विशेष ढक तराजु, डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला टेरस,
6: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
4: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484463 र 98164602204।
7: तहारा राजा जीका दिलुआ टुट जाई, तहारा राजा जीका दिलुआ टुट जाई।
8: उफ बल्ल घरक भिटा निखौराइदा।
9: मुस्कान पिठाई घरक भिटा हामी निके निउराइ छौ कि का? खेतमा सखलाङका लाग मिनी लै जाई पर्ना रह।
8: आपराइदा जान्छे बादा
9: ल्याल्या मै मिनी बनाकर धैरिया तु लैदा दिएस न।
8: हाँ होइठा दाई। ओहो हेरो यहाँ भित्तामा त ढिला पो बा, माथिले सब दिए परल टिका हाँ सब दिउ। अय्या दाई सब काटरल
9: दाई खै खै कहाँ काटल छै?
8: यहाँ दाई यी दाई हालमा काटरल।
9: अरे ल्याउ हाली क्यु बाटो म चाहिँ मुस्कानबाट सपो काटरलस ल्याउ हाली।
10: काबिल काकी काबिल
9: हेर न राकेश मुस्कान न सपो काटलस कल
10: ना त्याउ काकी ओ मुस्कान न्या त्याक स्थान छ बैठो न बेन काकी मुस्कान न श्वास कन सुटाई हलचल निकाल राख्न।
9: बैठा भैया मुस्कान छ श्वास क सुटो त
8: बैठा।
10: ओ काकी मुस्कान घरक लुगा घर गहना निकल जैना मेकअप फाँसर बना दी ओ हाथक चुड़िया की निकाल दी वाकर कटलक हाथ भर नहीं चला खना।
9: बैठा भैया सबो कटलक ठाउँ आन्जर पान्जर चिर कर इंजेक्शन ले टान कर अथवा मुँह ले चुस कर बीस पो निकलना हो कि?
10: नहीं नहीं काकी सबो कटलक घाव आन्जर पान्जर कटना डगना चुसना काम कर नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
9: ओसिनो कलसी झरमिरा लान्ख उही निटार्ख वाकर सबो कटलक ठाउँमा लगा दिउ त नानानु।
10: उफेनी हुई काकी घरेलु उपचार जस्ता कि झरबैरा जंगली खरबुटी ओ जडीबुटी फेर प्रयोग गराउने हुई बुझली?
9: बुझ्नु नानु बुझ्नु।
10: किन काकी रामेसना मोटरसाइकल लेखाए कहिट झट्ट से झट्ट साधन खोजक एन्टीभेनम हुलक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा लैजाई सेकजाई कलसे मुस्कान हुन झट्ट चुम्बर बनाई सेकजाई दादाई त अपना बेन ओटरा बेलासम हमार गाउँ से फोन एन्टीभेनम केन्द्र लगा पर ठकै छ स्नेक बाइट नेपाल डट ओआरजी का वेबसाइट खोजी कर तुम्हें दाता अन कह कर हेरा पड़ल हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डट ओआरजी वेबसाइट फिर खुल हमार गांव से मिर्सहेक स्वास्थ्य संस्था में को सर्पदंश उपचार कई जिना रही हो वहां ले जाए पड़ल मुस्कान होना।
9: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर रामेश नानू आ गई
10: लेव लेव लेव काकी मुस्कान हना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बिच्चा में बैठा रही का झट्ट से झट्ट सर्पदंश उपचार केन्द्र में पुगाई सीख जाए कल से मुस्कान हना बताई सीख जाए
9: बैठा बैठा याद करी सपवा डस्ल से मोटरसाइकिल स्वयं सेवी बलाई सर्पदंश उपचार केन्द्र में जाकर जान बचाई वा कौनो सवारी साधन उपलब्ध निहिलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगाकर फोन में से सुझाव ली
11: ओसने का मुस्याकल सापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो न व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझन साथ फिर काट से ठा संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी देखाई सकल से हुक्र सपो विषाहार अलग निरलग पहचान के खा सही उपचार कर सहयोग उठा
9: यदि समय में उपचार कर से दिन कल से सपो डसलक मन यहाँ बताई सक दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर से दिखा सपा डसलक मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केन्द्र में ले जा यहीले उमनयक जिनकी बचाए भारी मदद गर्था भर पर्ना वो सही जानकारी क्लाक ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाए क्लाक आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए छेक दिखा
12: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
13: जापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।

0: कापी रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस तपाटीन गटीलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा गई था कभू पेंसिल हेरा गई था कभू झोले फटा गई था बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: एसईईमा मौका परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको जरूरी सूचना
4: भीमदट्ट नगरपालिका र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको साझेदारीमा सञ्चालित महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालयमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अन्तर्गत 3 वर्षे प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सामान्य चिकित्सा नेत्र विज्ञान डिप्लोमा इन फार्मेसी कार्यक्रम अध्ययन अध्यापन भइरहेको जानकारी गराइन्छ
3: साथै शैक्षिक सत्र 2083-84 प्रमाणपत्र तह नेत्र विज्ञान अफ्थाल्मिक साइन्स मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी कार्यक्रममा केही सीट रिक्त रहेको हुँदा एसईईको मौका परीक्षामा सम्मिलित प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि इच्छुक विद्यार्थीहरूले भर्ना हुन तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला
4: भर्ना हुने विषयहरू
3: मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी
4: नेत्र विज्ञान ओए
3: अनलाइन फारम भर्ने मिति 2083 असार 3 गतेदेखि 18 गतेसम्म आवेदन शुल्क ₹1,000 मात्र
4: थप जानकारीको लागि महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर सम्पर्क फोन नम्बर 0969-59-0044 98-587-80-044 र 97-642-33-921 वेबसाइट www.mahakalishikshalaya.edu.np
5: गल्ती भए माफी पाऊ पहिले भन्छु सारी।

0: सामुदायिक रेडियो टीका एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश
1: आई बुढल्ला सुन्तो कि नै वानन्दे भोज आगिले न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनाइना उने पट्टा नि पैना त
2: अरे गहना बनाइना त हो दुकान खस्ती खस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
1: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
2: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
1: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा फिर ओस्ट बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था कहाँ से लन वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगलान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: ला फिर यो गाड़ी ने धोखा दिने भयो जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला टेन्सनमा भए म त अब
4: भाइलाई थाहै रहेनछ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि
3: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
4: कहाँ हुनु भाइ टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
0: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ
3: ल ल दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
5: हामी कहाँ सियाट एपोलो भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल ट्रेक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ

0: ओए रजनी वहाँ 62 नंबर लट्ठी बा देखाओ तो अच्छा लिखाओ तो
1: मुर्गी दाना देना जा रहा मैं काकर लट्ठी खा देती अब ना
0: एक तो तपा बा का मुर्गी ना खा रखे लट्ठी से डुरेले से बक्सा की आनो हारी छट्टा
1: तापन घिसका चलाई नहीं होती नहीं तो अमन दस सकल बेन घर भीतर आई लागी कल से भगेबी
0: पारक भीतर पैट का मुर्गी मुआडी वाडी कहीं भगाए खोज लख
1: आरम किरा फटिंगा मुर साफ सीर निशा कर कहीं फलाम को जारी लगा बात तपा मुर्गी खेती बुगाई नहीं थे कि बेन अपना न दाठी दूर रिना
0: हो बिना तो आ करना हो तपा देखती कि जर नाग लगना रही देव तपा तो अपना घूमकर बारी वोट कर गिरता
1: हमारे खेल सापन से डरे ना नहीं होनी मुखरथी अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई लगी पति रक्षा करत लाग वह आपन बचाव करत लाग काम दस ना कर था
2: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाई वा नी जीस गई साप मने देख खा डरे था नी चला खा दूर रलसी साप नी दस्त तर मुकुर खैना खाजा बाहर निस्कल जाना बल घास काट बेर ख्याल बेर ल्यांग बेर छू बेर से मने वही मारकलाग बाटा कना सबस का पट्टी रक्षा करना क्रम साप दस लाख रठ मने सापन व्यक्ति की मारक लाग रठ उसी का करबे फे साप दस लाख रठ
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाएक लाग आधिकारिक वेबसाइट www.snakebitenepal.org मा हेर सेती था
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: से कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, काना हो काना हो। बाबा के ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी, जरम भर भर बराई थी राहत।
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिपठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लनबो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहीं आनल झोला दस काटस बाटिन। ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में, रत गई झोला उद्योग,
2: झोला उद्योग
1: हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
3: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-2373।
4: आज तिमी मेरो वरीपरी किन घुम्दैछौ छोरी?
5: आमा मलाई सिक्री बनाइदिनुस् न, लाउन कस्तो रहर लाछ।
4: पैसा पनि त हुनु पर्यो नि छोरी, फेरि पढ्ने लेख्ने मान्छेले।
5: मेरो खुतुर्के छ नि आमा, मैले कति धेरै पैसा जम्मा गरेकी छु, फेरि सुन त पछि पनि काम लाउन सक्यो नि।
4: कुरा राम्रै हो छोरी, तर कसकोमा जाने हो त?
5: न्यू अछाम जालपा देवीमा कस्तो राम्रो गहना पाउँदो रहेछ, अस्ति नै हेरिसके मैले त।
6: न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स, सिद्धार्थ चोक टीकापुर। न्यू अछाम जालपा देवी ज्वेलर्स मा नयाँ नयाँ डिजाइन का विभिन्न गर गहनाहरू, माइली तिलहरी, हार, झुम्का, छड्के तिलहरी, बाला, चूरा, चन्द्रमा, जन्तर, चन्द्रहार, इन्डियन मंगलसूत्र, औठी, सिक्री, बिनारसन का गरगनारो पाइन्छन्। साथै चाँदीका सम्पूर्ण भाँडाकुँडा पनि उपलब्ध छन्। अछाम मंगलसैनको शाखा टिकापुरको सिद्धार्थ चोकमा रहेको जानकारी गराइन्छ। प्रोप्राइटर ध्रुव सुनार, फोन नम्बर 98688-14799, 98-24-60-25-32। अछाम मंगलसैनका लागि रूप सिंह सुनार, गोपाल सुनार, फोन नम्बर 98-24-67-28-25।

0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी।
1: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली।
2: गरेको भए हैन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स।
3: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन। सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भर पर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज। न कुनै फाइनेन्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट।
2: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
3: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
2: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ।
3: ई सेवा सबै सधैँ सँगै।
4: ए भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ। लु भन् त भाउ के पाउँछ त्यहाँ?
5: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर ढक तराजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ।
6: ए एभ्रिलाको कुरा गरेको हो? त्यो त मलाई पनि थाहा छ। त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि।
7: त्यति मात्र होइन, त्यहाँ त जस्मिन पेन्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ।
4: भन्दै सबै कुरा पाउने रहेछ।
8: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतोल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स।
9: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स।
10: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर।
8: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा। सम्पर्क फोन नम्बर 98484468673 र 98164602004।

0: बुका पी रही था, कभी पेंसिल रही था, कभी झोले फटाका आज था, का कना हो बाबा के उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लंग वो तो कहा टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला जस का टस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गई संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सक्कू भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कू जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के कार्यालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर से जनहित में जारी संदेश।

0: का हुई कमल आहे न बुक खाइल बाटो त
1: एरी न काका आई फुला टूरे बारी में गेल रही तबो का देली बीस निकाल देवी की कह के लेके आयल बाटो
0: सफो कटक बीस तक उपचार कर सर्वदम सब उपचार केंद्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ दिखा सब पकट लग हो कि नहीं हो के पट्टा लगा कर सर्पदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी वेनम से उपचार कर
1: सर्पदम से उपचार केंद्र के विषय में मैं फिर सुनल तो रहूँ
0: तर तर कुछ दिन कही आया ना तुरंत उपचार केंद्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदम से उपचार कर एंटी वेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था अतक के चिंता नहीं पड़त
1: भाई ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बात
0: एम्बुलेंस आप समय लागत था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी रे बाबू संदेश रोक झट बाहर आता
2: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरमेन का समय में जो उपचार देख जान जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केंद्र संचालन में बा ई उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न हो सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटीवेनम निःशुल्क उपलब्ध करेलबा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र संपर्क नंबर ठहरा पठा सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकी पता लगाई लाख आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org में हेर सेटा
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: ए भनदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ लु भन त बाउ के पाउँछ त्यहाँ
5: ए त्यहाँ त्यहाँ त नलका मोटर भक्त राजु घरमा लाउने कलर सबै पाइन्छ
6: ए एभ्रीलाको कुरा गरेको हो त्यो त मलाई पनि थाहा छ त्यहाँ त ग्यास ग्यास चुला नलकाका सामान किला काँटा सबै पाइन्छ नि
7: त्यति मात्र होइन त्यहाँ त जस्मिन प्यान्ट घर वायरिङका लागि इलेक्ट्रिकका सामानहरू पनि पाइन्छ
4: भनेदेखि सबै कुरा पाउने रहेछ
8: टिकापुरमा रहेको एकमात्र नापतल सामग्रीको आधिकारिक विक्रेता एभ्रिला ट्रेडर्स
9: विशेष ढक तराजु डिजिटल तराजु तथा घर निर्माण र भान्साका लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीको लागि सम्झनै पर्ने एकमात्र ठाउँ एभ्रिला ट्रेडर्स
10: पुरानो ट्रिनिटी स्कुल भएको भवन टिकापुर
8: प्रोप्राइटर पुष्पराज देवकोटा सम्पर्क फोन नम्बर 98484846673 र 98148602004

0: कापिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटा का आज का कना हो बाबा के उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कही था कबू पेंसिल हेरा कही था कबू झोले फटा कही था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई यहाँ झोला उद्योग में रख गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयको सार्वजनिक सुनवाई हुने बारेको सूचना। जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडाको आर्थिक वर्ष 2082-83 सञ्चालन भएका विकास निर्माण सेवा प्रवाह योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति उपलब्धि लगायतको विषयमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको हुँदा सम्पूर्ण सरकारवाला निकाय जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सामुदायिक वनका प्रतिनिधि बुद्धिजीवी शिक्षक बडघर स्वास्थ्य स्वयं सेविका कर्मचारी उपभोक्ता समिति युवा सञ्जाल बाल सञ्जाल पत्रकार नागरिक समाज तथा आम ओडावासीहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल असार 14 गते, समय दिउँसो 1 बजे, स्थान ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र, जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालय।
1: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल।
2: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो मिलबो नी करत, का कहिना हो का?
1: मिस्तरान बर्जनाऊ का ना घर हेरो ना, कटा सुगुर बनेल बाट, आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का, टूफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्र फे पटानी हुए, कि गुंगुआ बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
3: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
4: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: ओए रजनी वहाँ 62 नंबर लट्ठी बा देखाओ तो अच्छा लिखाओ तो
1: मुर्गी दाना देना जाला मैं कातर लट्ठी खा देती अब ना
0: एक तो तपा बाका मुर्गी ना खा रखे लट्ठी से डिले से बक्सा की आनो हरी झट्टा
1: तापन घिसका चलाई नहीं हुई थी नहीं तो अमन दस क्या कर बेन घर भीतर आई लागी कल से भगे भी
0: पारक भीतर पैट का मुर्गी मुआडी और खाड़ी कहीं का भगाए खोज लखो का
1: पारा में कीड़ा फटिंगा मुँह साफ सीधे नीचे आकर कहीं का फलाम का जारी लगा बाप तपा मुर्गी खेती बुगाई नहीं सेकी बेन अपना ना दाखी दूर रिना
0: हो बिना तो क्या करना हो सपा देखती की डर लागल बिना रही देव सपा तो अपना घूम का बारी और चल गिनता
1: हमारे खेल सापन से डरे ना नहीं बोली मुखर थे अमन से डरे था यदि क्यों जान अनजान में चलाई लगी पर तिरछा करत लाग वह आपन बचाव करत लाग साम दस ना कर था
2: सापन से दूर रही सापन रीस नी लगाई वा नी जिस गई साप मने देख कर डरे था नी चला कर दूर रह लसी साप नी दस्त तर मुखर खेना खाज बाहर निस्कर जाना बस घास काट बेर ख्याल बेर ज्ञान बेर छू बेर से मने मही मारक लाग बाटा कना सबस का प्रतिरक्षा करना क्रम में साप दस लाख रह था मने सापन व्यक्ति की मारक लाग रह उसी का करबे फिर साप दस लाख रह
3: सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाकै छ पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा हेर सेक्दै था
4: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
5: चेली हेदी धै बालाई लोटरी पढ्यो भने क्या बैंकको विवरण दिया पैसा खातामी आइजान्छ भन्यो
6: धैधै बा तुमले लोटरी भर्रै थ्या
7: आछिन क्या हो रे चेली लोटरी पढ्या त निको हो
6: कभै नभर्या लोटरी कसरी पढन्छ बा इसा मेसेज व्हाट्सएप फेसबुक भाइबर काइमीले आयाले कबै जनपतिया फोनै आयाला गई आफ्नो विवरण कबै जन दिया कसैले वित्तीय संस्थाले तुम्हारो पासवर्ड पिन आदि कबैले माग्दैन यो त बैंक आफैले नै माग्दैन सतर्क रहौ ठगी बटे बचौ सिद्धार्थ बैंक पठाई जनहितमी जारी सन्देश
8: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई
9: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयको सार्वजनिक सुनवाई हुने बारेको सूचना जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडाको आर्थिक वर्ष 2082-83 सञ्चालन भएका विकास निर्माण सेवा प्रवाह योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगति उपलब्धि लगायतको विषयमा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको हुँदा सम्पूर्ण सरकारवाला निकाय जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सामुदायिक वनका प्रतिनिधि बुद्धिजीवी शिक्षक बडघर स्वास्थ्य स्वयं सेविका कर्मचारी उपभोक्ता समिति युवा सञ्जाल बाल सञ्जाल पत्रकार नागरिक समाज तथा आम ओडावासीहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिको लागि यो सूचना प्रसारण गरिएको छ सार्वजनिक सुनवाई हुने मिति 2083 साल असार 14 गते समय दिउँसो 1 बजे स्थान ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के संजय 5 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां उकरण स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। टीकापुर नगर विकास में घोटाला हुईलक जग्गा किनके पीड़ित हुईलक हुकरा तनाव में। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के महाधिवेशन में सांझ के 7:30 बजे से मतदान हुईना। कैलाली के तमाम स्थान से लागू औसत खैर ऋण सहित आज जहां पकड़ाओ। सूर्य पश्चिम प्रदेश सरकार है छोट योजना कार्यान्वयन नहीं करना महालेखा के सुझाव। आप पूरा खबर टीकापुर नगर विकास घोटाला हुईलक जग्गा किनलक ई बेला तनाव में बाटे। जग्गा किन के पीड़ित हुईलुकरा न्याय पैना माग करती बाटे। 18 वर्ष विदेश बैठ के श्रीमान के कमाइल पैसाले 2068 साल में जग्गा किनके घर बना के बैठल टीकापुर नगर पालिका 1 ब्लॉक नंबर 9 के जानकी शर्मा 1 दशक से जग्गा के कारण तनाव में रहल बाटे। टीकापुर के हिमा साउद फिर समेत 15 वर्ष आगे श्रीमान शांति सेना में जाके कमाइल पैसा से फिर किनलक जग्गा सरकार से जफत करना कहल पासे चिंतित रहल बाटे। जानकी हिमा जस्ते टीकापुर के पृथ्वी रावल के जग्गा जफत हुईना बात में फिर समेत मर्माहत रहल पृथ्वी रावल के कहाइबा। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के केन्द्रीय सदस्य के निर्वाचन के लाग संजय 7:30 बजे से मतदान हुईना कहलबा। प्रवक्ता मनीष झा से सांझ के 7:30 बजे से शुरू हुईना जानकारी दिले बाटे। अटवार के असार 7 मन से नई शुरू हुईलक महाधिवेशन 9 गते समकेलक तैयार करगिल रहा। यद्यपि महाधिवेशन के समय लंबे न कहलबा। आज बिहान के 9 बजे से शुरू हुईना कहना मतदान शुरू हुई भात नहीं शेकर हो। कुछ बेर आगे खेल उम्मीदवार हुकरण के प्रारंभिक नामावली सार्वजनिक करलबा। प्रवक्ता झा के अनुसार संजय 5 बजे सम दावी विरोध के समय तैयार करलबा कल से 6 बजे अंतिम नामावली प्रकाशन करनाबा। दोसरो चरण के मतदान भर काल बिहान के 9 बजे सारे सेकना पार्टी के समेत आकलन रहल बतागिलबा। खोज खबर में आई गरी विश्राम विश्राम पासे फिर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टिका प्रेफम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ। प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ
1: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
1: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
1: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: हुँदैन। टीकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
1: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ पृथ्वी बचाऊ। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टीकापुर कैलाली।
3: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुरमा।
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने।
3: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
4: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
3: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
4: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
3: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
4: ईसीजी सेवा,
3: डिजिटल एक्सरे सेवा
4: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
3: फोन नम्बर 98484 27359 र 98842 73 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बारो टीकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
5: आई हो बड्डो घर कहिया सीध जाइब पाछा से शुरू करल मने घर सीजा सेकल
6: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
5: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
0: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541426
7: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
8: यही असार 20 गते तेस्रो शनिवार को दिन
9: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला
7: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बडी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन लगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागू पदार्थ सेवन गर्ने
9: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनु होला
8: डाक्टर आउने दिन यही असार 20 गते तेस्रो शनिबार
0: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टीकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 9868080008 र 9825637772
10: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा टीकापुर नगरपालिका कार्यक्षेत्र बनाके काम करतेलक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाओं के समन्वयात्मक बैठक ओहल बा टीकापुर नगरपालिका के आयोजनामा हुईलक बैठकमा यी क्षेत्रमा कार्यरत रहल संघ संस्थाओं अपनाहुक्र संचालन करते रहल कार्यक्रम गतिविधि बजेट के बारे में जानकारी कराइल बाटे कार्यक्रम में दिगो विकास समाज वजनी के कार्यक्रम संयोजक विनोद शाह सहकर्मी समाज के कार्यक्रम संयोजक नवराज जोशी बी ग्रुप के कार्यक्रम अधिकृत अंजू चौधरी यार्ड धनगढ़ी के रतनलाल चौधरी दलित महिला केन्द्र नेपाल के मीना चौधरी एचएफ नेपाल के मीन बोहरा नवजीवन एकता समाज के रवि चौधरी सीमाबीन स्वयंसेवक नेपाल माइटी नेपाल लगायत के संघ संस्थान संस्था से करलक गतिविधि संचालन करना गतिविधि के बारे में जानकारी कराए रहे बैठक में टीकापुर नगरपालिका के तमाम शाखा प्रमुख वार्डाध्यक्ष वाड़ा सचिव कार्यपालिका सदस्य लगायत के उपस्थित रह कार्यक्रम समापन करते निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी लक्ष्मी ओडसे नीति निर्माण करना जनप्रतिनिधिकरण के सहभागिता से आगामी दिन में संस्था से भोक्ति रह समस्या समाधान करना सहज होना बटोले बाटे वहां संरचना निर्माण हो समन्वय में कुछ समस्या रह सफेन आगामी दिन में सकू पक्ष मिलकर काम करना बटोले बाटे संघ संस्था से कोनो समस्या व जिज्ञासा रहलसे नगरपालिका के संघ संस्था समन्वय शाखा संगे समन्वय करना आग्रह करती तमाम शाखा से सहकार्य करके क्रसक्रसिंग मुद्दा में समेत काम कर सकना उल्लेख कर वहां आगामी दिन में शिक्षा स्वास्थ्य कृषि शाखा लगायत के शाखा के प्रतिनिधि में सहभागिता में कार्यक्रम संचालन करना आग्रह कर टुक्रे योजना कार्यान्वयन नै गर्न महालेखा कार्यालय से सुझाव दै गिल्बा प्रदेश सरकार से यहाँ आयोजना के बजेट विनियोजन करना के साथ ही कार्यान्वयन करना पाइल पाछे महालेखा से सरकारले छोट योजना कार्यान्वयन नै गर्न परिपाटी हटेना सुझाव दै गिल्बा आर्थिक वर्ष 2081-82 मा प्रदेश सरकार के 1231 थो समेत छोट योजना कार्यान्वयन करल महालेखा के परीक्षा के समेत आठों वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेख करलबा आयोजना वर्गीकरण के काम तथा मापदंड 2080 में प्रदेश सरकार से कार्यान्वयन करना आयोजना लगायत के समेत लागत कार्य प्रगति के समीक्षा तो गिलबावे मापदंड अनुसार 3 करोड़ रूपया बराबर के आयोजना गांव पालिका के कार्यालय से कार्यान्वयन हुना व्यवस्था करलबा कलस्ते सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार से ऊ 5 वर्ष समेत उसे ढेर 5 लाख समके 388 थो 6 लाख के समेत 98 थो 10 लाख के 745 थो योजना कार्यान्वयन करलबा छोट योजना में बजेट विनियोजन करबेर खर्च करना काम नियंत्रण समेत करना महालेखा से परीक्षक के समेत कार्यालय से प्रदेश सरकार ने सुझाव दे गिलबा आर्थिक वर्ष 2081-82 में प्रदेश सरकार के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्रालय माठत के कार्यालय में 3,280 थो योजना रहल बता गिलबा। खोजखबरमा फेन्से विश्राम विश्राम पासे फेर्से एबी सुन्ती रवि सामुदायिक रेडियो टिकाप्र एफएम।
11: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
12: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका, नलकाका सामान, नलकाका पाइप, फरुवा, कुटो, कोदालो, बञ्चरो, हटब्याग, थर्मस, जर्किन, पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड, भान्साका लागि किचन र्याक, प्लास्टिकको सामान, घर वायरिङका सामान, पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू, पित्तलका भाँडाकुँडा, ग्यास सिलिन्डर, झाडु, छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली, संचालक मदनराज देवकोटा, स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि, सम्पर्क नम्बर 9849588080।
10: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश के कैलाली के तमाम स्थान से लागू औसत खैरोहेन सहित आज जहां पकड़ाव करल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रभारी से मंगलवार के तमाम स्थान मन से 8 विदेशी नागरिक सहित 8 जहां पकड़ाव करल जानकारी देलबा। प्रहरी के जनसंपर्क तथा मीडिया समन्वय शाखा के अनुसार धनगढ़ी उपमहानगर पालिका से 16 थो 1 ग्राम 640 मिलीग्राम खैरो हेरोइन सहित सुरेश बोहरा है पकड़ाव करल बा। उसके वार्ड नंबर 17 मन से खैरो हेरोइन सहित 310 मिलीग्राम सहित के 25 वर्षीय सुरेश चौधरी पकड़ाव करल बा। यह समाचार संगे खोज खबर रॉयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर नगर विकास में घोटाला हुई जग्गा किन के पीड़ित हुई खुकरा तनाव में। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के महाधिवेशन शाहीजून के 7:30 बजे मतदान हुई। कैलाली के तमाम स्थान से लागू औसत खैर हेरण सहित 8 जहां पकड़ाओ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार है छोट योजना कार्यान्वयन नहीं करना महालेखा के सुझाव। लिटा बकलक थारू भाषा खोज खबर अत्रै और समाचार 6 बजे नेपाली भाषा में खोज खबर सुन सकबी। एबे के खोज खबर से मैं रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाक्रम सुनती रवि राम राम।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सेकी, जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाख सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय महेन्द्र नगर कंचनपुर से जनहित में जारी संदेश।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नहीं सकी, जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नहीं हुई भी भ्रष्टाचार करुया मनई न खुल के विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय महेन्द्र नगर कंचनपुर से जनहित में जारी संदेश।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहा
0: था। का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटास गुर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला जस का टस बाटी। ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में, रट गई यहाँ झोला उद्योग। हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373।
3: टीकापुर नगरपालिका को सूचना, नगरपालिका भित्र संचालित व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्न गराउनुका साथै दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका व्यवसाय अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ओडामा दर्ता गरौ।
4: भवन निर्माण मापदण्ड 2072 अनुसार नयाँ घर निर्माण गर्दा घर नक्सा पास अनुमति लिएर मात्र निर्माण गरौ।
3: यस टीकापुर नगरपालिका कार्यालय वरिपरि लगायत नगर क्षेत्र भित्र व्यवसाय गरी बसेका व्यापारीहरूले पसल अगाडिको सार्वजनिक जग्गा, बाटोमा टहरा लगाए पसलको सामग्रीहरू राखी व्यवसाय गरिरहेको र त्यस्ता कार्यहरूले सड़क दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकोले त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरौ।
4: नगर क्षेत्रभित्र रहेका घुम्टी ठेलाहरू तथा पसलमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरूले आफ्नो पसलका अगाडि जथाभावी फोहोर गरी उचित व्यवस्थापन नगरेको देखिएकोले यथास्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गरौं र गरौं। टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।

0: ओहट हेर बुढ़िया बरखक समय खेबा पखारिक मुहका रुकल बाकी मुसवा आयल कलश आब मुसवा खुशी सब पफे आई सकता
1: ओहो होनिका सबको समझनो घरक अंदर पादर झफास से बाहर तक अच्छा का पहिल बा काट पर ना रह
0: असी करी हेर बुढ़िया वो सिन्हो कलश से काल मिट्टी ना वो टेला रोटी पका कर बासी खाई दूसरा सर परिवार मन मिलकर सर सफाई कर दी दूसरा आंजर पांजर रहल पोहर का व्यवस्थापन कर दी तो नहीं हुई
1: हुई था वो बुढ़वा असी डाला मत ध्यान ध्यान पोहर झपास भी था मन ताप नुख बैठल रह सकते ना
0: वो हो से तो कलक हो छाई समीरा छावा विवेक तू मई मिलकर घरक आंजर पांजर रहल ढंग ढंग घास काटी कालिक लानल काटे से घर से तनिक दूर कटकोरा लगाई पड़ल बखारिक मुहकर से सांप मुस्कु सूखे पैठनी सेकना में चबटदार पड़ल दूसरा घरक आंजर पांजर फसफारो सफा हुई से सांप अना तो उत्साह कम हो जाए
1: कल शनिश्चर थे हो ध्यान का फुर्सत थे बा
2: साफ बर्खा छाकक समय में सुखा ठामा बैठ मन पड़े था मौसम में आपन बसारा में पानी पैसना पीला कोर से सुखा ठाव का खोजी में होकर बाहर निस्कट
3: मूस मुर्गी जसिन आहारा का खोजी करना क्रम में फिर सांप मानव बस्ती लग आई सक
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैख पट्टा लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिख सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश
1: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।